0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: स्थैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल कैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: California Extreme Energy Drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

0: अनुरोधक दीप जनवन कार्यालय दोलखा।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

0: मजुरा सांदल के बनमा नाचने छन मजुरा।
1: वनमा जाँदा सलाई लाइटर जस्ता आगजन्य वस्तुको प्रयोग नगरौं। वन छेउमा स्याउला झारपात नजलाऊ। वनमा आगो लाग्नै नदिऊ। लागिहालेमा होसियारी पूर्वक आगो निभाइहालौं।

0: बीमा को लाभ दिए आफ्नो कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों
1: उकालीमा पनि हजुर मोटर जाँदो रहेछ गिन्ता हत्तेरिका फस्यो यार फेरि
2: फसिहालिन्छ नि गुरु।

0: अनुरोधक दीपजनवन कार्यालय दोलखा।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

0: बीमा को लाभ दी आफ्नो कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जियौ।
1: उकालीमा पनि हजुर मोटर जाँदो रहेछ गिन्ता।

0: मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

नमस्कार रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम बैनी थोप्लो सात मेगाहर्ज बाट म बद्री प्रसाद सापकोट आज विक्रम सम्मत 2083 छ अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सन 2026 मे 20 तारीख ज्येष्ठ 6 गते बुधवार चौथी तिथि अब स्तुति गरौं।

मिकपना बढ़ो सुस्ताई सुस्ताई सहजाव भौतिक जगत में नहर दा नारी ले प्रगति पथ को।

यो शरीर मात्रै हो हामीले देखेको, जानी का होला जानी का होला, उनै सबलाई थाहा होला जानी का होला।